अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

सूरमा मूवी से दिलजीत दोसांझ की आवाज में इश्क दीवाजियां, बहुत सुंदर गाना है और दिलजीत दोसांझ की आवाज में ना कुछ तो अलग बात है यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एवर 6.3 एफएम, तनीषा गेजी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। ट्यूजडे का दिन, August 25th, क्या हालचाल है? कल का दिन कैसा रहा? और सब बढ़िया था ना? कोई छोटी मोटी परेशानी भी हुई तो इसे ऐसे सिर पे लोड तो नहीं ले लिया ना उसका? नहीं लेना है वो, जी हाँ, ऐसे चलने दो, सही रहता है। हम फालतू चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके आज के दिन में लेकर आएंगे, डजंट मेक सेंस यार। जो कल हो गया उसे कल पे छोड़ दो। और आज एक नई शुरुआत है, इसी पॉजिटिविटी और एंथुजियाज्म के साथ हम पूरा दिन बिताने वाले हैं, ठीक है? जी हाँ, बाकी कमाल गानों की जिम्मेदारी मेरी है तो वो मैं पूरी कर दूंगी। यही है आइडिया, पता है, दिस इज द हैक टू हैप्पी लाइफ। बी रिडिक्युलसली डिल्यूजनल ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स थिंग्स कि भाई सब मेरे फेवर में हो रहा है, सब अमेजिंग ही हो।

0: जी सिर्फ आगे ही देखना है दो, इस गाने का मीनिंग कुछ और है, लेकिन हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि हमने आगे ही देखना है, पीछे जो हो गया वो हो गया, अब तो उसे हम चेंज कर नहीं सकते, हम आज पे और आगे पे फोकस करते हैं। हाँ जी, थोड़ा नॉस्टैल्जिक तड़का भी दर्ज रही है।
1: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
0: ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, बेसिकली हर दिन अपने आप को आईने में देख के

All these amazing tracks are lined up for you in this hour. और भी बहुत सारी surprises हैं, ढेर सारी आपसे बातें करनी हैं, आपके हालचाल जानने हैं और गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी तो चाहिए मुझे. 3311 1063 इज द नंबर. आ जाइए, सिलसिला शुरू कर दीजिए आपके प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का. और जो भी इस वक्त ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, अभी उठे हैं, निकल चुके हैं, ऑलरेडी रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं, सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप वी ऑल हैव एन अमेजिंग डे. एक प्यार सा गुड मॉर्निंग मुझे भी भेज दो, मेरा भी दिन बन जाएगा यार. सुन रही हो रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. हर्षदीप कौर और शंकर महादेवन की आवाज में दिलबरो फ्रॉम द मूवी राजी, ब्यूटीफुल गाना यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। एंड नाजनी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, इफ द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, स्टॉप स्टेयरिंग, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वाटरिंग द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन। वाओ, दिस इज absolutely amazing and such a beautiful thought to start your day with, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना कि हम हमारी जो blessings हैं उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन दूसरों की जो है उससे अपनी blessings को compare करके demean उन्हें छोटा ज़रूर कर देते हैं। That's not okay at all. साथ में अबरार जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। संधू जी का भी मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग जी, आई होप यू हैव अ फंटास्टिक एंड प्रोडक्टिव डे। हरपाल संधू फ्रॉम जिक्रित द खान जी ऑफ बिंदास। एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग, जैसा कल था वैसा आज नहीं है और जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, एंजॉय योर लाइफ एंड स्माइल, सुप्रभात। ओए होए, इतनी प्यारी प्यारी थॉट्स भेज देते हो ना आप लोग, क्योंकि ऑल दीज आर वेरी यू नो लिटिल रिमाइंडर्स, जो कि हमें पता है चीज़ें बट लाइफ की इस हसल बसल में हम भूल जाते हैं। तो इट इज़ गुड टू स्टार्ट योर डे विद सच पॉजिटिव रिमाइंडर्स। थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज कैन कीप मैसेजिंग, हाँ बाय द वे रुकना नहीं चाहिए, 3311106 पर। एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास। रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: तनिषा
1: शान और साधना संगम की आवाज में कुछ ना कहो फ्रॉम द मूवी कुछ ना कहो ऐसे कैसे पर मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए यार लिसनिंग टू रेडियो 11.6.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड बिलाल जी का गुड मॉर्निंग आया है हमें अलॉन्ग विद दैट इमरान जी का भी गुड मॉर्निंग आया है वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू द स्टार ऑफ द एयरवेव्स विशिंग द प्रीटीएस्ट रेडियो जॉकी अ मॉर्निंग एज वार्म एंड ब्राइट एज योर पर्सनालिटी दैट इज सो स्वीट थैंक यू सो मच And I read something the other day and that struck a chord with me because most of us are doing this right now. So it says the quote or the quote says Sab hasil karne ki koshish karo Gaur se suno ha Sab hasil karne ki koshish karo par sehat, sukoon aur rishto ko kho kar nahi. Hum apne career aur ambition ke piche itne crazy aur like you know blindfold dal kar आइट साइड के लिए सामने तो एम्बिशन ही रहता है सो वो डालकर निकल जाते हैं कि आसपास की चीज़ें जो हमसे छूटती जा रही है हमें वो रियलाइज ही नहीं होता है तो वो चीज़ नहीं करनी है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज व्हेन यू विल रीच योर गोल यू नो वट एवर यू हैव टारगेटेड जो भी आपका एम्बिशन है आपने वो पा लिया है पूरा कर लिया है उसके बाद अगर आपके पास सेहत नहीं है कैसे इंजॉय करोगे सुकून नहीं है तो मज़ा आएगा ही नहीं और रिश्ते नहीं हैं तो सेलिब्रेट किसके साथ करोगे इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत भी होती है उस यू नो डेडिकेशन और एम्बिशन के साथ तो डू नॉट फॉरगेट दैट मेरी जान ठीक है और सेंडिंग आयुष्मान खुराना की आवाज़ में बहुत खूबसूरत गाना सादी गलिया जाओ फ्रॉम द मूवी नौटंकी साला स्टे ट्यून्ड एंड जियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner अबू सिद्रा मॉल, where convenience meets choice and community meets style. अबू सिद्रा मॉल, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: Danisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वेदर की बात हो जाए थोड़ी सी. It's a bit better today. So right now the temperature is 35 degrees and it feels like 41. ठीक है, बर्दाश्त किया जा सकता है, but फिर भी it is very warm and बहुत ज़्यादा बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो sunscreen तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, और stay hydrated. अभी भी वक्त है क्योंकि Med Department ने कहा है कि eventually from 20th of September जो है आप नोटिसेबल डिफरेंस देख पाओगे टेम्परेचर में. तब तक तो ये ऐसा ही चलने वाला है. सो देयर आर फ्यू मोर डेज, बट ग्रेजुअली जो ये कम हो रहा है ना, मुझे मजा आ रहा है. मैं इसी में खुश हो गई हूँ. छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है भाई जिंदगी में, तो बस यही सही. बाकी इवेंचुअली विंटर इज नियर. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज विंटर एंड दोहा ब्यूटिफुल यार, बहुत ही कमाल. सो इसी बात पे भेज रही हूँ एक बढ़िया सा फ्रेश सॉन्ग फॉर यू. सुन रही है रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: मोहितान के आवाज में रॉकस्टार मूवी से फिर से उड़ चला बहुत ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं अब यही पंगा हो जाता है जी
2: तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगरा फिरा
1: रील्स ने एकदम से ये गाना फिर से उठा दिया था नहीं
2: क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है लगता खुदा का कोई नेक इरादा है
1: अब देख रहे हो ये वाला आवर काफी लवी डवी सा हो रहा है सही है एंजॉय करते हैं लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है बैक टू स्कूल के बारे में सो 27th ऑफ अगस्त को हो रहा है बैक टू स्कूल बैश अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक बहुत अमेजिंग चीज़ें हमने प्लान करके रखी है सभी बच्चों के लिए एंड इट इज़ गोना बी फन बट रजिस्ट्रेशन जो हैं अब वो क्लोज हो चुके हैं ऑफिशियली सो पीपल हु आर आस्किंग कि रजिस्टर कहाँ करें अब नहीं कर सकते मेरी जान अब नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा एंड दोज़ हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें कन्फर्मेशन नहीं आई है क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कन्फर्मेशन है Kinda yes, but still you will get a call. कुछ लोगों को कल call already जा चुकी है कुछ लोगों को आज आ जाएगी Don't worry, if you have registered, you will get the call. और अगर ऐसा होता है कि नहीं आई है तो 3311106 is the number. आप कभी भी message कर सकते हैं We will help you through this also, ठीक है बाकी मिलते हैं यार 27th of August को अबू सिद्रा मॉल में 3 से 7 बजे तक ढेर सारे फन के लिए
3: New partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
4: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
3: And
4: Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
4: Call 70222525.
3: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा मेगा सिंह और ध्वनि भानुशाली की आवाज में मुखड़ा वेख के मर गया नहीं होए होए। रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर दनीश है आपके साथ जी। तो आज का सवाल मतलब कतई लेमनेस की हद पार है। आई एम टेलिंग यू आपको गुस्सा भी आ सकता है इसका जवाब सुन के, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, गौर से सुनिएगा, रिवर्स कांट हियर एनीथिंग, रिवर कुछ सुन नहीं सकती, क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रिवर्स कांट हियर एनीथिंग, व्हाई? इसका जवाब आपने मुझे देना है 3311063 पर। लॉजिक मत लगाना प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। रिवर्स कांट हियर एनीथिंग, रिवर जी नदी कुछ सुन नहीं सकती, क्यों नहीं सुन सकती ये बताइए 3311063 पर, या फिर कॉल कर दो 4444106 पर। फिलहाल भेज रही हूँ जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

केके की आवाज में बोल हमें से ब्यूटीफुल ट्रैक किया मुझे प्यार है अगर है तो एंजॉय करो यार इसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं है इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहां पर लेम जैम्स में मैंने पूछा था कि रिवर सुन नहीं सकती क्यों Why rivers cannot hear anything? Why? So I've got the answers over here. कुछ सही है कुछ गलत है बाकी सही वालों पे फोकस करते हैं हम वी गॉट आंसर्स फ्रॉम सुरेश जी निपू जी संजू देर इज सलमान देर इज विक्रम साथ में मुझे आया है आयशा का मैसेज और श्रुति का मैसेज है और किसी का नाम सिर्फ ए है और किसी का नाम सिर्फ जी है और किसी के इमोजीज भी बने हुए हैं यू नो द स्ट्रगल आई गो थ्रू एवरी डे बट स्टिल यू हैव मैसेज्ड दैट इज रियली अमेजिंग एंड आई हैव गॉट द आंसर्स एंड द आंसर इज क्योंकि वो बह रही होती है फ्लोइंग रिवर यू नो द वाटर इज फ्लोइंग बह रही है हिंदी में यस कांट हियर बेरी या सॉरी माफ कीजिएगा इस बात के लिए मुझे बट आई वॉज एक्साइटेड टू आस्क यू दिस बिकॉज इट इज Absolutely lame. Crazy lame, nahin? Sending this beautiful track your way, Sundariya Radio, all over 106.3 FM, Jio, Bindas. Ye mera compensation hai, theek hai?

0: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

You're listening to Radio 106.3 FM Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर अरिजीत सिंह की आवाज में ओ वेदर दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज यार तो झूठी मैं मक्कार मूवी से सुना आपने एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने अनाउंस कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रांसफर्स हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल नेशनैलिटीज 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए जितने भी पब्लिक स्कूल्स में इट इज अवेलेबल ऑन मारिफ पोर्टल फ्रॉम 25th अगस्त दैट इज टुडे से लेकर 1st of October तक तो अगर आप इसका इंतजार कर रहे थे तो जी हो चुका है शुरू जाइए करवा लीजिए ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू अलोंग विद दैट मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू स्टडी मटेरियल एंड अपडेट्स टू सम एग्जिस्टिंग मटेरियल फॉर दिस न्यू एकेडमिक ईयर सो ग्रेड 10 का जो साइंस है नाउ इट विल कंबाइन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों एक यूनिफाइड सब्जेक्ट में एंड इट विल बेसिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स और स्टूडेंट्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा साइंस का ऑल्सो दे हैव एडेड अ न्यू लाइफ एंड प्रोफेशनल स्किल्स सब्जेक्ट विच विल बी टॉट अक्रॉस प्राइमरी प्रिपरेटरी एंड सेकेंडरी लेवल्स एंड दिस इज रियली कूल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स विल लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी और साथ में एक फैमिली कल्चर प्रोग्राम भी होगा जो कि फोकस करेगा फैमिली वैल्यूज पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और हेल्दी रिलेशनशिप्स पे होम इकोनॉमिक्स एंड लाइफ मैनेजमेंट भी ऐड किया गया है विच विल टीच प्रैक्टिकल स्किल्स सच एज कुकिंग स्यूइंग पर्सनल केयर एंड फर्स्ट एड फॉर बॉयज दे विल लर्न कैंपिंग आउटडोर स्किल्स फर्स्ट एड एंड सेल्फ रिलायंस हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट के लेसन भी दिए जाएंगे टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट एंड दे कैन चूज देयर करियर्स अकॉर्डिंगली और कुछ न्यू सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम्स भी है जो कवर करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इकोनॉमी एंड ट्रेड को एंड डेटा साइंस को ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सब अवेलेबल है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर्स और जो भी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करेंगे दे विल अर्न डिजिटल सर्टिफिकेट्स फॉर देम सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज इफ यू सी द होल एजुकेशन सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड करियर रेडी एजुकेशन एंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ AI पे एम्फेसिस करा जा रहा है फाइनेंशियल स्किल्स लाइफ स्किल्स और फ्यूचर करियर्स दिस इज ब्यूटिफुल ये जो नया करिकुलम है इट साउंड्स रियली फैसिनेटिंग आई एम एक्साइटेड फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक स्टे ट्यून्ड जुविन दास

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव। राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm a number one. Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds, Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और ये जो गाना हमने सुना है ना, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ये इस वक्त हम कह सकते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को. जी हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट यू हैव ऑल द राइट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ प्रमोशनल मैसेजेस. अब उसके लिए छोटी सी चीज़ आपको करनी होगी, वो ये है कि अगर आपने नहीं रिसीव कर रहे ना ऑल दोज प्रमोशनल मैसेजेस, यहाँ सेल है, वहाँ सेल है, दिस दैट, ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है, एंड इट गेट्स रियली अनोइंग एट टाइम्स. सो कतर्स नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इन्फॉर्म किया है कि पहले तो आपने ये कन्फर्म करना है कि आपने अपना कंसेंट दिया भी था या नहीं टू रिसीव दोज प्रमोशनल मैसेजेस. क्योंकि यूजली when we shop from somewhere or you know we have logged in somewhere, they get the number and they start sending it on their own. So agar nahi diya hai aapne consent to aapne contact karna hai senders ko to stop receiving the messages. Theek hai, jidhar se bhi aapko aa rahe hain wo promotional messages, you can contact the sender aur unhe mana kare. Agar koi action nahi liya gaya unki taraf se and you are still receiving the messages aur wo koi response nahi de rahe hain, the organization is not responding to your request, then you can file a complaint to PDPPD, Personal Data Privacy Protection Department. National Cyber Security Agency ki website par jaiye, aapko wahan par ek complaint form milega. Wo form aapne fill karna hai aur aapne mail kar dena hai use privacy@ncsa.gov.qa par. privacy@ncsa.gov.qa par. Ji haan. So agar bahut zyada pareshan ho chuke hain in spam messages se, to ye step aap le sakte hain aur sukoon bhari bina ting ting notification wali zindagi jee sakte hain. Sunte rahiye Radio Olive, Jio Bindaas. Cool song. Radio Olive par aane wala gaana, cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir? Kya baat ye baat hai? Cool song.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

KK और Alisha Shenoy की आवाज में धूम से टच मी सोने हैं ओनली ऑन रेडियो 11.3 FM Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड दोज हु लव टू बाय लग्जरी वॉचेस आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज लेकर आई हूँ मैं क्योंकि मजादत ऐप पे कल ऑक्शन होने वाला है लग्जरी वॉचेस का सो जाइए और कल ऐसे मौके पर शौका मार लीजिए वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स मिलने वाले हैं जैसे कि रिचर्ड मिल पटेक फिलिप एमएस एंड और भी बढ़िया लग्जूरियस ब्रांड्स होंगे वहाँ पे सो शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये ऑक्शन चलने वाला है सो गुड लक मेरी तरफ से एंड आई होप यू गेट द वॉच यू वॉन्ट

और लौट कर जब आओगे तो वैगी विजडम में आज हम बात करने वाले हैं माइकल फिडेलके की, जो कि इंटर्न से सीधा सीईओ बने हैं। उनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, बात करेंगे उसके बारे में। स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास।

0: केके और वसुंधरा की आवाज में मैं हूं ना मूवी से चले जैसे हवाएं अमेजिंग ट्रैक ऐसे एनर्जी से भर दिया इसने मुझे. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके सात बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहां पर. वैकी विजडम में एज आई सेड आज हम बात करेंगे माइकल फिडेलके की स्टोरी के बारे में. ठीक है, करेंटली ही इज द सीईओ ऑफ टारगेट ग्रुप. यू नो द टारगेट या यूएस में? यस करेक्ट, वही. सो उसके सीईओ हैं वो. अब उनकी स्टोरी में इंटरेस्टिंग क्या है, 2026 में वो सीईओ बने हैं उसके एंड 2003 में ही ज्वाइंट टारगेट एज अ फाइनेंस इंटर्न. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि भाई इंटर्न ने ज्वाइन किया था अब सीईओ बन गया. नो इट्स नॉट दैट. बीच में जो लेयर्स हैं ना दोज आर रियली इंस्पायरिंग. सो उन्होंने फाइनेंस इंटर्न के तौर पर ज्वाइन तो किया था लेकिन थ्रू आउट दीज यू नो मोर देन 20 ईयर्स उन्होंने इतने सारे रोल्स उस कंपनी में प्ले किए हैं. ही हैज़ वर्कड इन फाइनेंस, प्राइसिंग, मर्चेंडाइजिंग, HR एंड ऑपरेशन एंड एवरी थिंग, यू नेम इट, एंड ही हैज़ वर्कड इन दैट. उनको जब भी किसी ने कोई रोल ऑफर किया विद इन द कंपनी वाज लाइक यस आई विल टेक द चैलेंज, आई विल लर्न एंड आई विल एक्सेल, एंड ही डिड दैट. नाउ व्हाट हैपेंड, क्योंकि उन्होंने हर एस्पेक्ट को देखा है कंपनी के, सो ही नोज द इंटायर ग्रुप, द ऑर्गेनाइजेशन रियली वेल, लाइक फ्रॉम ग्राउंड अप, यू नो. सो उनसे बेटर कौन जान सकता था, एंड दैट इज वाई टुडे ही इज द सीईओ. How amazing is that? सुनने में बहुत fascinating लगता है obviously, but कितना ज़्यादा vigor चाहिए होगा ना to grow like that. And जितने भी उनके experiences हुए throughout the professional journey, हर experience ने एक layer add किया है, you know, उनके professional journey में. और इसी वजह से he is at the position he is. So basically the moral is कि भाई कभी कभी ना सिर्फ एक ladder ढूंढ के चढ़ जाऊँ मैं जल्दी से ऊपर, अभी join किया है अब कल मैं यहाँ पे एकदम boss बन के बैठ जाऊँ, ये नहीं होना चाहिए. Rather you should be good enough to become your own ladder. First learn the things around you and be capable of handling that position. वो भी matter करता है, ठीक है. इट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ अस कि हम अगर ज़्यादा वक्त किसी कंपनी में हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार मैं क्यों हूँ अभी भी इस कंपनी में, मैं अभी तक मैनेजर क्यों नहीं बनी हूँ, या फिर मैं कोई और रोल क्यों नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. तो बेसिकली फंडा यही है कि आप जो भी रोल कर रहे हैं ना वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस का लेयर ऐड कर रहा है आपके लिए. सो डू नॉट थिंक दैट वे. और ये बात हमेशा याद रखने की है कि जो आपकी फर्स्ट जॉब है शायद वो आपकी डेस्टिनेशन ना हो, लेकिन जो आपकी करंट पोजीशन है वो भी आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है. कीप लर्निंग, कीप मूविंग एंड कीप सेइंग यस टू द अपॉर्चुनिटीज दैट टीच यू समथिंग, बिकॉज वी नेवर नो. आपने सोचा होगा कि यार मैं तो मैनेजर बनना चाहता हूँ, बट आपके लिए सीईओ का प्लान करके रखा हो यूनिवर्स ने, है ना. इसीलिए कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप डूइंग दैट एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. चियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Hour. Yeah, guys.

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha.
2: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और इधर तो आप हो ही ऑलरेडी है ना. अब आपने जाना है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक. इफ यू हैवंट फॉलोड अस येट, देखो बहुत देर हो जाएगी, बाद में बोलना मत, फटाफट से जाके फॉलो कर लो मेरी जान, ठीक है. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी हैं हम. एंड वी कीप पोस्टिंग यू नो दी जो छोटी छोटी स्निपेट्स आप हमारे सोशल मीडिया पर लाइक इंस्टा और फेसबुक पर देखते हो, उसका फुल इंटरव्यू आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर. और बहुत अमेजिंग अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हैं वहाँ पर, जाकर चेकआउट कीजिए. एंड टिकटॉक, स्नैपचैट, सब जगह यार, आप बस बोलो. और नंबर तो आपको पता ही है, 3311-1063. जब मन चाहे तब मैसेज कर दो. वी आर हियर टू लिसन एज वेल.
3: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली.
2: देखो ओजी तो ओजी.

इस गाने पे मैंने अपने स्कूल में डांस किया था. आई थिंक इट वॉज टीचर्स डे सेलिब्रेशन और समथिंग, और बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी और मैं बीच में भूल गई थी. फिर मैं भूल गई तो मैं खड़ी हो गई और फिर मैं भाग गई स्टेज.

आई थिंक एनुअल डे की ऐसी स्टोरीज तो सबके पास होती है. अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है या आपने कुछ ऐसा किया है तो जरा शेयर कीजिए. 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: Olive Short Break. Radio Olive
1: Short Break. शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम मैं हूं जैकी श्रॉफ।
4: जैकी श्रॉफ
3: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में चुरा के दिल मेरा ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और कुछ देर पहले जब मैंने टारगेट सीईओ की स्टोरी बताई थी ना, तो उसमें मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है तनीषा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ कमिटमेंट्स होते हैं तो मजबूरी में अपनी प्रेजेंट पोजिशन को ही फाइनल आइडेंटिटी बना लेते हैं. ऑल दो लर्निंग और विलिंग टू हैव बिगर ऑप्शंस बट वेन और बट आपकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और रिलेटेबल लगी. थैंक यू. सो मोहम्मद यूसुफ खान साहब, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, यू नो सबका लाइफ जर्नी अलग होता है, सिचुएशंस अलग होता है, बट लेट्स होप एंड लेट्स स्टे पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस कि यूनिवर्स ने कुछ बड़ा प्लान करके रखा है. मे बी इसीलिए देरी हो रही है, मे बी इसीलिए अभी चीज़ें नहीं बन रही हैं, बट इवेंचुअली इट विल ऑल फॉल इन टू प्लेस इंशाल्लाह. हाँ जी, और साथ में ना मैंने करनी थी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात जी. जो अंधाधुन ऐसे भरोसा कर रहे हैं AI पे, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है. नॉट लाइक लिटरली सेहत, वो तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट राइट नाउ आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू. नहीं मानोगे ना मेरी बात, मुझे पता है, बोलोगे तनीषा तो कुछ भी बोल रही है. नहीं, आई कम विद प्रूफ. ओके, सो 1818 की एक बुक जो रिलीज हुई थी 1818 में, यस yes, उस बुक का एक पैसेज उठाकर AI के यू नो प्लैजरिज्म वाले प्लेटफॉर्म पे चेक किया गया. AI ने उसे 100% AI जनरेटेड बता दिया है. भाई ये तो क्रेडिट भी खा लेता है यार, मतलब 1818 का तब तो AI का नामो निशान सोच भी नहीं थी, नामो निशान तो दूर की बात है, और वो क्रेडिट खा गया. कहता नहीं ये तो AI जनरेटेड है. बेचारे फ्रैंकेंस्टाइन जिनकी वो बुक है वो सोच रहे होंगे यार, मतलब तब तो AI था नहीं, मैंने तो ऐसा किया नहीं है, मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है. सो प्लीज़ वट एवर यू सी यू नो ऑन दीज AI प्लेटफॉर्म्स, आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, यू गेट सम इन्फॉर्मेशन, उसको वेरीफाई कीजिए, डबल चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो. AI से भी गलतियाँ होती हैं मेरी जान. ठीक है, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: तनिषा
1: तनिषा बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिश है मेरी भी। हाँ जी, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और बैक टू स्कूल 27th को होने वाला है, रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली क्लोज हो चुके हैं। सो दोज हु आर मैसेजिंग कि कैसे रजिस्टर करें नहीं कर सकते अब, सॉरी खत्म हो गए यार। एंड दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपको कॉल या तो कल आ चुकी है या फिर आज आ जाएगी। डू नॉट वरी अबाउट द कॉन्फर्मेशन, कॉल आएगी ही आएगी। बस अपना फ़ोन अपने साथ रखिएगा, फ़ोन नहीं उठाओगे फिर कहोगे कि बताया नहीं तुमने, तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। बाकी 27th August अबू सिद्रा मॉल 3 to 7 PM हम मिल रहे हैं फॉर बैक टू स्कूल बैश।
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindaas Morning chal rahe hain yahan par. And what a track. I love this song. मतलब I think जब पहली बार मैंने धनक मूवी देखी थी ना, you know, listen to this track, तब से मैं फैन हूँ और बिल्कुल बोर नहीं हुई हूँ अभी तक. जी नहीं, repeatedly सुनने के बाद भी. Yes. Well, it is 9:49, अभी 50 हो ही जाएगा जल्दी से और मेरे जाने का वक्त हो गया है. हाँ जी, मिलेंगे कल सुबह 6 बजे. वेंसडे का दिन खुशी और बढ़ जाएगी क्योंकि हम वीकेंड के और नज़दीक हैं. और कल तो संध्या है, नॉल यू नो, बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, सुंदर सुंदर रेडी होके आने का है. तो मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ कल के लिए. आप, आई होप कि आपका दिन आज बहुत अमेजिंग जाए, सब कुछ बढ़िया हो एकदम. और छोटी मोटी चीज़ें अगर हो ना तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट हैपेंस यार. अदरवाइज सब अच्छा अच्छा होगा तो बोर हो जाएंगे ना कि यार सब बढ़िया ही चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है लाइफ में. सो लेट इट बी. वो ना हमें ग्रैटिट्यूड और वो इम्पोर्टेंस हैप्पीनेस की फील करवाने के लिए ये छोटी मोटी डाउन्स भी जरूरी होते हैं लाइफ में. ऑल्सो इफ यू हैवन फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया येट, radioolive.qa इज द हैंडल, फटाफट से फॉलो कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग एट ऑल. क्योंकि कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं, वी कीप पोस्टिंग वीडियोज ओवर देयर, अगर आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा जी. ऑल्सो बैक टू स्कूल, येस रिमाइंडर दे रही हूँ, कॉल्स आ रहे हैं लोगों को ऑलरेडी, कल से स्टार्ट हो चुके हैं, आज भी कुछ लोगों को कॉल्स जाएंगे. सो अपना फ़ोन अपने पास रखिएगा अगर अभी तक आपको कॉल नहीं आई है तो, क्योंकि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ओवर हियर कि यार कन्फर्मेशन नहीं दिया है आपने, 27 को तो ये होने वाला है. तो मिल जाएगी मेरी जान, और आपने रजिस्टर किया है ना तो आपने आना है, बात खत्म इधर ही. जी आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट. बाकी हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

यार, महीने की 25 तारीख जैसे जैसे आती है ना, वैसे वैसे ये तो लगने लग जाता है कि ये जो पैसे हैं इन्हें कैसे खर्च किया जाए। मतलब अब खर्च करने के लिए पैसे जो है वो बचे नहीं है, लेकिन खर्चे जो है वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मंथ एंड पर ही आ रहे हैं। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसुस। सो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, आपको मेरी आवाज़ से ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि कोई कमलेश है जो कशिश बनकर बात करने की आपसे कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपकी कशिश ही हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी हो चुकी है बिकॉज पिछले 3 दिनों से मुझे जुकाम हो रखा है। आप सब तो जानते ही हैं, आपकी गेट वेल सून की वजह से ही तो बेटर हो पा रही हूँ मैं। बस थोड़ा सा और आपको जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गेट वेल सून जो बोलना है वो बोल दीजिए, क्योंकि आज का शो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉलीवुड की सारी गॉसिप आपको मैं देने वाली हूँ, फैशन में क्या कुछ चल रहा है वो बताने वाली हूँ, एंड ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट में से लेकर आई हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर गाने तो आपको इंजॉय करने है, साथ में आपकी कशिश के साथ बनी रहना है दोपहर 1 बजे तक। सो स्टे ट्यून्ड रहना है। फिलहाल मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे जो है इंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:11. दैट इज 10:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hello, namaskar. Mamma mia, main hu Chunky Pandey aur aap sun rahe ho mujhe Radio Olive.

0: मूवी का नाम जो है वो भले ही बैड न्यूज हो, लेकिन गुड न्यूज जो है वो मौसम की ओर से मिलती हुई दिख रही है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कसोश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, पता नहीं ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है या आप लोग भी मेरी तरह ही फील कर रहे हैं कि अब जब आप अपने ऑफिस से या घर से पैर बाहर निकालो तो एकदम से ह्यूमिडिटी फील नहीं हो रही है। ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, गर्मी भले ही उतनी ही हो, लेकिन टेम्परेचर भले ही उतना ही हो, लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम फील हो रही है, जिस वजह से इरिटेशन थोड़ी कम हो रही है। कल मैं और मेरा कलीग जो है वो हम कहीं गए थे, एंड वहाँ पर जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले, एसी में से बाहर निकले, मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद थी कि मेरे चश्मे पे जो है एक फॉग की लेयर जो है वो जम जाएगी, धुंधला दिखने लगेगा मुझे सब कुछ, लेकिन टू माई सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड हवा चल रही थी, एंड हवा भी ठंडी चल रही थी। सो तभी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमने बोला चलिए मौसम जो है वो बदलने वाला है। 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सनसेट जो है वो 5:59 PM पे जो है वो एस्टिमेटेड है, एंड आज ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में जो है वो कम रहने वाली है, और आज हवा जो है वो थोड़ी कम बहेगी कल के कंपैरिजन में, 6 km/h की स्पीड से ये हवा जो है वो बहने वाली है। बाकी आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज देखिए ह्यूमिडिटी हो या ना हो, सनलाइट आपकी स्किन पे पूरी तरीके से पड़ने वाली है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो धूप से इंटरेक्शन ही नहीं होता, मैं तो कार अपने घर से कार में आता हूँ एंड उसके बाद सीधे पार्किंग में आता हूँ एंड उसके बाद ऑफिस में आ जाता हूँ, लेकिन नहीं, आपकी कार की विंडशील्ड के थ्रू, कार के ग्लास के थ्रू भी जो धूप आप तक आती है वो भी हार्मफुल होती है। सो आपको सनस्क्रीन बिल्कुल ही लगाना है। फिलहाल इस हीट को बीट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग कूल सॉन्ग जो है यार आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

विश मूवी से चोरी चोरी चुपके चुपके ये गाना जो है आपने इंजॉय किया। 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त में बना रही हूँ। अब देखिए यार, आप सबसे और मेरा शो लाइफ मस्त है से मैंने ये जो है सीखा है कि हर चीज में ना पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मैं जो है इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि यार सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया, आवाज बदल गई है, आरजे होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात में भी कोई पॉजिटिव चीज जो है वो ढूंढी जाए। तो मैंने जो है अपने दोस्तों से पूछा कि यार बताओ कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये जो मुझे सर्दी है इसमें मेरी आवाज़ चेंज हो गई है इसके। मेरे दोस्त जो है वो मुझसे कह रहे हैं कि एक काम कर प्लीज़ ना, इस सबसे बेहतर तरीका जो है तुम्हारी आवाज़ का तो यही है कि एक बहुत दिनों से ना मेरे एक दोस्त ने मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो तुम क्या प्लीज़ इसको फ़ोन करके धमका सकती हो। यस, ये फ़ायदा है कि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डरावनी हो गई, तो अब उसका फ़ायदा मेरे दोस्त उठाना चाहते हैं, मतलब वाओ। और इस चीज़ के फ़ायदे ये हैं कि अब मैंने जो है पापा को फ़ोन किया किसी अननोन नंबर से एंड पापा भी लाए कि हाँ भाई साहब बताइए कौन बात कर रहा है, वो अपनी ही बेटी की आवाज़ नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं उनसे जनरली किसी भी बात पे बात कर सकती हूँ बिना ऐसे समझे कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। सो बहुत सारे फ़ायदे मैंने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ जेन्युइन फ़ायदा मुझे इस आवाज़ का लगा नहीं, लेकिन हाँ अपना एक नया वर्जन देखने को मिलता है जो कभी कभी ही मिलता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब आइए आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, शायद इसमें कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए। सबसे पहले तो सभी साची जी ने जो है मुझे हाय मैम गुड मॉर्निंग लिखा है। गुड मॉर्निंग। संधू जी ने जो है वो लिखा है गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ डे फिल्ड विद जॉय लाफ्टर एंड सक्सेस, मे योर कॉफी बी स्ट्रॉन्ग एंड योर स्पिरिट्स बी ब्राइट। जियो बिंदास। हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, थैंक यू सो मच जी, पर कॉफी नहीं चाय जो है वो कड़क जो है वो हम पियेंगे। एंड इन्होंने मुझे गेट वेल सून जी भी लिखा है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद यूसुफ खान जी का मैसेज पढ़ लेते हैं, हैप्पी ट्यूजडे मॉर्निंग इन्होंने कहा हुआ है, और इन्होंने ये रियलाइज कर चुके हैं और मुझे भी करवा रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल ही बैठ गई है, प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट, अल्लाह कामिल सेहत दे, आमीन। थैंक यू सो मच, बस आपकी इसी दुआ की जो है वो दरकार थी, थैंक यू सो मच। एंड मैं बार बार जो है ये इसीलिए आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि मुझे सर्दी हो गई है, मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ऐसी अब हो गई है, वरना जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या एक दो बार सुना है उनको लगेगा कि इसकी आवाज़ तो ऐसी ही है। सो मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, लेकिन अभी सर्दी की वजह से ऐसी हो गई है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, एंड ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है इसमें आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना ही पड़ेगा, वरना आपके साथ भी यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। तो मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ, तो मेरा एग्जाम्पल सेट कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने खुद के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर दबंग 2 मूवी से, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

0: यस जी, ऑफ कोर्स जी, अक्षय कुमार जी और यू हनी सिंह जी, जिस कुड़ी चमकीली की बात कर रहे हैं वो इधर है। यस yes, आपकी कुड़ी चमकीली आ गई आपके लिए लाइफ मस्त है शो लेकर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है 106.3 रेडियो ऑलिव पर। एंड सेल्फी मूवी का ये ट्रैक आपने इंजॉय किया। अब देखिए यार, हर रोज हम आते हैं और स्ट्रेस के बारे में बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ का स्ट्रेस जो है वो कम किया जा सकता है। अब देखो, मैंने एक प्रॉपर सेगमेंट ही सिर्फ आपके स्ट्रेस के लिए डेडिकेट कर दिया। इसका मतलब तो ये है कि आपके और मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, लेकिन एक मतलब मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो आपको सिर्फ एंजाइटी हो उस वक्त के लिए नहीं है, ये जनरली आप अपने दिन में एक प्रैक्टिस पे ला सकती हो ताकि आपका लाइफ जो है वो थोड़ी सी ऐसे सॉर्टेड सी हो जाए। अब करना क्या है आपको, आपको अपने दिन में मतलब आपके स्केड्यूल में 10-15 मिनट सिर्फ स्ट्रेस लेने के लिए ही डेजिग्नेट कर देने हैं। जिस तरीके से आप जो है जिम को टाइम दे रहे हो, खाने को टाइम दे रहे हो, या ये मेरा फन टाइम है, ये मेरा ब्रेक टाइम है, बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रेस टाइम भी आपको यू नो डिसाइड करके रखना है। एंड अपने पूरे दिन में जो भी स्ट्रेस आपको हो उसको पुश करते जाना है उस टाइम के लिए। सपोज आपको इस वक्त जो है अभी 10:50 होने वाला है, सो 10:50 पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि यार ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, या फिर सेविंग नहीं हो रही है। सो इस थॉट को जो है आप बोल दीजिए कि यार इस सेविंग के बारे में ना मैं 12 सोचूंगा, क्योंकि 12 मेरा स्ट्रेस टाइम है, 12 से लेकर 12:10 के बीच में। सो 12 o'clock पर जो है मैं इस स्ट्रेस के बारे में सोचूंगा कि मैंने सेविंग नहीं करी है। एंड इसको आप ऐसे ही आगे खिसकाते रहिए। एंड जब 12 बजेंगे, सो 12 यानी 12 से लेकर 12:10 तक आपको लेना है इस दुनिया का जितना आप स्ट्रेस ले सकते हो उतना स्ट्रेस आपको उस 10 मिनट में ही लेना है। एंड फिर आप देखना, जब आप ये 12 बजे बैठोगे ना स्ट्रेस लेने के लिए कि ओके मेरा स्ट्रेस टाइम हो गया, क्या क्या सोचा था मैंने कि मुझे फाइनेंसेस का स्ट्रेस लेना है, कोई बात नहीं यार देखेंगे हैंडल करेंगे। सो जब आप स्ट्रेस को आगे खिसका देते हो ना एंड एक्चुअल में जब उसका सोचने का वक्त आता है तब आपको वो इतना बड़ा टास्क लगता ही नहीं है। सो एक बार ट्राई करके देखिए, एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए अपना स्ट्रेस टाइम बनाइए। बाकी फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, Ghana.

0: भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:11, दैट इज 11:11। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
3: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Oh no! फिर से स्कूल।
5: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
6: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
7: And Doha Center, shop more, pay less.
8: Old Airport Road, Doha and Alcor.
9: Call 70222525.
10: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
11: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
12: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: दूल्हे राजा मूवी से इस चटपटे गाने के बाद जो है बातचीत करने के लिए हम वापस आ चुके हैं। शो का नाम है लाइफ मस्त है 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूं आपकी कशिश एंड आज एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इस टॉपिक को जो है मैं पहले भी उठाने ही वाली थी अपने शो में, लेकिन आज मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ हो गया जिसके बाद मुझे लगा कि यार कल परसों नहीं, आज ही इस चीज़ पर बात की जाएगी। सो सुबह ऑफिस आने के बाद ऑफिस के सभी लोगों से किसी बात पे जो है डिस्कशन चालू हो गया एंड बात आ गई जेन अल्फा, जेन जी, जिलेनियल्स, मिलेनियल्स और जेन एक्स की, इन शॉर्ट बूमर्स की। सो इस पर हम बात कर रहे थे एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारे हेल्थ को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक जनरेशन चेक भी है। मतलब अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि वो कौन सी जनरेशन में फॉल करते हैं, कि वो जेन जी है, वो जिलेनियल है, वो मिलेनियल है, या वो जेन एक्स है या बूमर है बेसिकली। सो ये जो जनरेशन वाला ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना कि ओ यूर अ जेन जी, मतलब किसी को जोक करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो जेन जीज पे जोक बना देता है। एंड इसमें मैं बाकी लोगों को क्या दोष दूं, जेन जीज को खुद कुछ कंटेंट नहीं मिलता तो वो खुद के जेन जी होने पे या तो मजाक उड़ा देते या तो फिर ऑफेंड होके बैठ जाते हैं कि यार हम जेन जी हम तो ऐसे ही है। सो अब मेजरली एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी आपका जेन जी होना या मिलेनियल होना हो गया है। मतलब लोग जो है अगर उनका गानों में टेस्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है तो वो कह देंगे बीइंग अ 90s किड, बीइंग अ मिलेनियल हमारा जो म्यूजिक टेस्ट है वो इतना अच्छा है, या जो जेन जीज पुराने गानों को पसंद करते हैं वो कहते हैं आई एम अ जेन जी बट मेरा जो पसंद करने का तरीका है ना वो मिलेनियल्स की तरह है। सो अब काफ़ी सारी चीज़ें कंपेरेटिवली अब जनरेशन वाइज जो है असॉर्ट की जाती हैं। एंड एक खबर जो है वो ये आई है कि जापान का जो टोक्यो है वो जेन जीज के रहने के लिए सबसे परफेक्ट शहर की कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन मी बीइंग अ जेन जी, मुझे तो कतर जो है वो अमेजिंग लगता है कि यार एक जेन जी के लिए अगर कोई परफेक्ट जगह है सो वो है कतर। फुल वाइब है यहाँ पर एंड मतलब मजा ही आ जाता है। अब आप मुझे जो है अब मैसेज करेंगे 3311063 पर और सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आप इनमें से कौन सी जनरेशन में फॉल करते हैं। आप मिलेनियल है, जिलेनियल है, आप जेन जी है, या आप अगर जेन अल्फा है तो भी मुझे बता सकते हैं, जेन एक्स है तो भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सी जनरेशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट जो जगह है जेन जीज के रहने के लिए वो कौन सा है। अब जेन जीज की बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है उन पर बात कर लेंगे हम। सो फोन उठाइए, मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर और ये बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जेन जीज के लिए रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। मुझे तो लगता है इंटरनेट, बिना इंटरनेट के जेन जीज की लाइफ लाइफ है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेन जीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आप चाहे तो उन्हें रोस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई अच्छी बातें भी कह सकते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, सच में मुझे बुरा नहीं लगेगा। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जिस पर आप आकर ये बातें कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं और अगर आप ये बातें करेंगे तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, है ना। सो फिलहाल यहाँ पर जो है आपको फुल्ली खुली छूट मिल रही है अपनी बातें मुझे बताने की, बात करने की, कि आपको क्या लगता है जेन जीज के रहने के लिए सबसे परफेक्ट जरूरत की चीज क्या है। 3311063 इज द नंबर, इस पर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर।

यार आपको नहीं लगता ये गाना बहुत ज्यादा अहेड ऑफ द टाइम था, मतलब जेन जी कोटेड है यार ये गाना तो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसोस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो अब आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब इंटरनेट की सबसे ज्यादा फैंसी, सबसे ज्यादा की जाने वाली डिबेट जेंजीज वर्सेस मिलेनियल्स एंड जिलेनियल्स एंड जेन अल्फा, इसको मैं जो है अपने शो तक खींच कर ले आई हूँ एंड आज हम यही डिस्कस कर रहे थे। बट एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो टोक्यो शहर है वो जेंजीज के रहने के लिए परफेक्ट करार दिया गया है, यानी परफेक्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कतर जो है वो भी कहीं पीछे नहीं है, बिकॉज जेंजीज के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सब कुछ यहाँ पर है। एस्थेटिक लोकेशंस चेक, वाईफाई चेक, मतलब आप चाहे कैब में बैठो, चाहे मेट्रो में बैठो, चाहे कहीं भी चले जाओ, आपको वाईफाई वहां पर मिल जाएगा। सो मुझे ये लगता है ये वाली एक बहुत मैंडेट चीज है जो कि चेक हो गई है। एंड इसके बाद अगर मैं बोलूँ कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स, एंड जेंजीज आर ऑलवेज ब्रोक, मतलब जेंजीज के पास आप कितने भी पैसे दे दो उनके पास हमेशा जो है बहुत कम पैसे होते हैं। सो कन्वेंस जो है यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, मेट्रो का कनेक्शन इतना अमेजिंग है कि आप आराम से इधर से उधर जाके ट्रैवल कर सकते हो। सो ये एक परफेक्ट चीज़ है। एंड इंस्टाग्रामेबल है, मतलब हर जगह आप, मतलब अगर आप रोड की अपने जूतों के साथ फोटो खींचना चाहो तो आप खींच सकते हो, इट्स इंस्टाग्रामेबल, मतलब आप कहीं भी फ़ोन लगा दो आपकी फ़ोटो अच्छी ही आएगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए जेंजीज की कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आप कितने भी बजे कतर में बाहर चले जाइए आपको सेफ फील होगा। एंड जेंजीज को क्या चाहिए, आज़ादी, कि आप जो है कहीं भी कभी भी जा सको और आप सेफ फील करो। सो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट जो है टोक्यो हो ना हो हमारा कतर ज़रूर है। सो इसी बात के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगले गाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ मस्त है शो में जो है लाइफ इज क्रेजी गाना, मतलब पूरी तरीके से सही बैठता है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए, वेक अप सिन मूवी से शंकर महादेवन की आवाज में। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। अगर एक मूवी जो है जो आपको देखनी चाहिए फन के लिए वो रिकमेंड करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

23 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने भी यही कहा था कि हमने अपनी बेटी का नाम जो है वो रख दिया है और नाम है कशिश। और आज वही बेटी आपकी कशिश जो है यहाँ पर लाइफ मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई है 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखो यार, मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि आने के बाद मैं बताऊंगी आपको कि यार ऐसी कौन सी मूवी है जो आप इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप एक फैमिली फ्रेंडली मूवी जो है वो क्रेव कर रहे हो कि यार बड़े टाइम से कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी नहीं देखी, अच्छी सी मूवी नहीं देखी जिससे यू नो थोड़ा सा फील गुड सा हो जाए, तो मैं आपको बताने वाली हूँ ये कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म्स या हॉलीवुड की एक्शन मूवीज देख देख के अगर आप बोर हो गए तो एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मूवी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये मूवी जो है मैंने देखी थी सबसे पहले मेरे स्कूल में। सोचो अगर ये मूवी मेरे स्कूल में दिखाई होगी तो कितनी ही इंस्पायरिंग, कितनी ही अमेजिंग होगी। तो अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर ही मूवी इंजॉय कर सकते हो। मूवी का नाम है स्टैनली का डब्बा एंड ये प्योर नॉस्टैल्जिया वाली मूवी है मेरे लिए, तो बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। इस मूवी में जो है एक फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है स्टैनली, उसकी कहानी है जो कभी भी टिफ़िन लेकर अपने स्कूल नहीं जाता है। एंड उस स्कूल का जो एक टीचर है जो अपने घर से तो टिफ़िन नहीं लाता है लेकिन बच्चों का जो टिफ़िन है वो खा जाता है। सो इस स्टोरी पर जो है एक बहुत ही प्यारी सी मूवी बनाई गई है। एंड मैंने जब ये मूवी देखी थी मैं उस बच्चे से यानी स्टैनली के कैरेक्टर से भी छोटी थी। सो यानी ये मूवी मेरे लिए तो काफ़ी रिलेटेबल थी, काफ़ी बढ़िया थी। एंड आज भी ये मूवी मुझे उतनी ही ज़्यादा पसंद है। एंड किस तरीके से एक बच्चा जो है अपने स्कूल में आगे बढ़ता है, टीचर्स का उसके डेवलपमेंट पे क्या असर होता है, फ्रेंड्स का क्या असर होता है। सो एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी मूवी है, एक बार ज़रूर से आपको देखनी चाहिए। मैं तो अगर स्कोर करूँगी इसे 5 में से तो आराम से 4.5 इसे दूंगी, बिकॉज बहुत ही प्यारी मूवी है। एंड आप इसे देख सकते हैं, बस मतलब खाना खाते खाते अगर आपको कुछ देखना है तो आप ये मूवी लगा के चलने दो। फिलहाल देखिए एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, ऑल ऑफ फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आर। सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहो। आकर जरा फैशन की बातचीत करेंगे। वॉल्यूम बढ़ा लिया ना, बढ़ाओ और कहते रहो आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।

वैसे तो देखिए मैं आपको जो जो एकदम ट्रेंड में चल रहा है ना फैशन वो बताती हूँ, लेकिन आज मैं जो है एकदम हक्की बक्की रह गई जब मैंने ये वाला जो ट्रेंड है ये देखा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसुश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, हर रोज आपको मैं बताती हूँ कि कौन सा कलर ट्रेंड में चल रहा है, कौन सी ज्वेलरी ट्रेंड में चल रही है, लड़के जो है वो किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं या फैशन में क्या कुछ नया हुआ। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूँ, ये जो ट्रेंड है आपको भी जल्दी से इंस्टाग्राम पे या कहीं भी देखने को मिल सकता है, इन्फ्लुएंसर्स जो है आजकल बंद घड़ियाँ पहन रहे हैं। लिटरली पुरानी जो ऑक्शन वाली जो वॉच है या जो उनके एंसेस्टर्स की घड़ियां हैं या उन्हें ज्वेलरी जार में या किसी यू नो थ्रिफ्ट स्टोर में अगर उन्हें घड़ी मिली है सो उसे अगर वो चलती नहीं है लेकिन वो अच्छी दिखती है तो उसे पहनने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। यस, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या फिर पॉइंट क्या है। वैसे देखो जब से फ़ोन जो है हम सबके हाथ में आया है तब से मुझे नहीं लगता कि घड़ी में टाइम देखने की आदत हम सबकी है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड नहीं हो जाएगा कि मेरी घड़ी जो है वो मैंने पहन रखी है बट उसमें टाइम गलत है या वो चलती ही नहीं है। सो आपको क्या लगता है कि क्या कभी आपने ऐसा किया है कि यार बस मैच हो रही है घड़ी इस वजह से हमने अपने कपड़ों के साथ पहन ली है, बाकी चल नहीं रही है या उसमें बैटरी ख़त्म हो गई है, ऐसा हुआ है? देखो मेरे साथ एक आध बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास मेरी मॉम की एक घड़ी थी और मुझे किसी इवेंट पे जाना था एंड वही एक ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ मैच होने वाली घड़ी थी तो वो नहीं चल रही थी फिर भी मैंने पहन ली थी जस्ट बिकॉज वो थोड़ी सी मैचिंग थी। सो क्या आपने ऐसा किया है और क्या आपको ये ट्रेंड में थोड़ा भी सेंस लगता है? 3311063 इज द नंबर, इस पर अगर आप बता सकते हैं। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो। आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास.
2: Time check.
3: Brought to you by
2: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukhwakif Alkhor.
4: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:10. दैट इज 12:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
5: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
6: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
5: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
6: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
5: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
7: Hi everyone, this is Benny Deol here.
8: Benny Deol here.
7: Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: परफेक्ट कपल गाना है ये. मतलब अगर ये गाना सुन के किसी की शक्ल आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर समझ जाओ वाऊ मुशाए प्यार हो गया आपको. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, सब लोग जो है वो वापस आ रहे हैं वेकेशन से एंड सबके कजिन, सबके रिलेटिव, सबके दोस्त जो है वो अपने घरों से यानी अपनी अपनी कंट्री से जो है कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल सामान लेकर आ रहे हैं. एंड बच्चे जो है उनको जो है काफी ऐसा लग रहा है कि यार अब हम आ चुके हैं, अब तो वापस स्कूल जाना पड़ेगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किताबें खोलने से पहले उनको एक बार खुल के खेलने का मौका दे देना चाहिए. बस इसीलिए जो है बैक टू स्कूल जो इनिशिएटिव है, बैक टू स्कूल कैंपेन जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को हम बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती मजा करने वाले हैं बच्चों के साथ. रजिस्ट्रेशन देखिए एकदम क्लोज हम कर चुके हैं एंड बहुत सारा फन करने वाले हैं. अगर आपको ये फन जो है ये देखते रहना है, अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाए बाय चांस, तो देखो आपको और भी मौके मिलने वाले हैं. आप उसके लिए बस जाकर रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. बाकी मिलते हैं जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनके साथ अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को. तो देखो यार, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बहुत सारा फन होने वाला है यहाँ पर.
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: अब देखिए इस कूल सी अपडेट के बाद एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर तो बनता है, तो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

बिल्कुल यही गाना जो है वो दिमाग में चलता रहता है जब आप मतलब अपने घर से इतने दूर अपने रूम में बैठे रहो और आपको जो है कोई पानी देने वाला भी ना हो, लेकिन लेकिन यही सेम कंडीशन आपके घर में होती है, वहां पे भी कोई आपको पानी ऑफर नहीं करता, फिर भी ये गाना तो नहीं बचता है। देखो यही सिचुएशन हो जाती है जब आप अपने घर से दूर होते हो, अपनी फैमिली से दूर होते हो, भले ही वो घर पे रहते ही आपसे बात ना करे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी दूर रहकर जहाँ पे वीडियो कॉल में ज्यादा बात हो जाती है आपको तन्हाई तन्हाई वाली फीलिंग आती रहती है। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देने वाली हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जो आपके लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, कल ही हमने बात की थी कि ब्रह्मास्त्र 2 के लिए आलिया भट्ट ने जो है अपना स्लॉट एकदम फाइनल कर दिया है, एंड दीपिका पादुकोण भी शायद फाइनल हो सकती है। अब एक वर्डिक्ट आ गया है दीपिका की टीम की तरफ से कि ये जितनी भी आप स्पेकुलेशन सुन रहे हैं, जितनी भी न्यूज़ सुन रहे हैं आप, ये सब गलत है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, दीपिका पादुकोण ने अभी तक हाँ नहीं कहा है या वो शूट नहीं कर रही है। अब इससे तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी ब्रह्मास्त्र 2 देखने की अब होप जो है वो थोड़ी और कम हो रही है। कोई बात नहीं, एक बहुत ही अमेजिंग गाना माई नेम इज़ खैर मूवीज़ आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो। ब्रह्मास्त्र तो जब आएगी तब आएगी, देखी जाएगी। आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

ऑफ कोर्स जी, देखिए आपको भी मेरी ये मोहब्बत जो है वो याद आएगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार आपको और कौन कर सकता है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ एंजॉय कर रही थी शो लाइफ मस्त है। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, तो मैं चलती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड बाकी अगर मेरी याद सताए तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे इतना कंटेंट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है कि बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे मिस कर रहे हो। बाकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे, यानी सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है शो में। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर रेडियो सेट्स पर जो ऑडियो है, वॉल्यूम है, वो बढ़ाओ और इन्जॉय करो। और आपकी कोशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
1: द वेट इज फाइनली ओवर

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय गाइस, दिस इज अबार्ट शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: फिर से स्कूल?
0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
0: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
4: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
0: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Mornings and night. Schedule hai tight. Kabhi right hai wrong. Kabhi wrong hai right. Kabhi wrong.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ। स्वागत है, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, और बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक उड़ान भरने वाले हैं जहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो ये सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर आप मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: लाइफ का एक कड़वा सच जो मुझे समझ में आया वो मैं बताना चाहूंगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक बहुत ही कड़वा सच मैंने रियलाइज किया, एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया, जो कुछ चीजें हमें पसंद है खाने में, ठीक है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये पैटर्न ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, हमें मीठा खाना पसंद है, जंक फूड खाना पसंद है, आलसी बैठे रहना पसंद है, ये सब हमें पसंद है, ठीक है, मगर ये सब हमारे लिए बुरा है। और जो कुछ चीज़ें हमारे लिए एक्चुअली अच्छी हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटली मूव करना, वर्कआउट करना, हेल्थी खाना खाना, ये सब सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, मगर हमें पसंद नहीं है। तो लाइफ का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि जो चीज़ें हमें मोस्टली पसंद नहीं होती, जो हमें करना अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा करना चाहिए कभी कभी, क्योंकि वो लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करता है हमें। और यही बात बोलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को. Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
0: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. As

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं कुछ हैबिट्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो दिखाते हैं कि आईक्यू काफी बढ़िया है। ये हैबिट्स अगर एक इंसान में है तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी आईक्यू जो है काफी अच्छी है। तो जो कोर कॉग्निटिव हैबिट्स हैं उनमें से सबसे पहला आता है क्विक लर्निंग, यानी कि जल्दी जल्दी नए कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना, कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही इजीली समझना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होना कि भाई हम जानते हैं कि यार नहीं पता, नॉलेज के जो है लिमिट्स रहते हैं, और फ्रीक्वेंटली माइंड का वैंडर करना, वो अपने माइंड को जो है एक्सप्लोर करने का एक वो देते हैं ताकि आइडियाज मिलते रहे, प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करते रहे। अगर हम बिहेवियरल और सोशल ट्रेट की बात करें तो अकेले रहना थोड़ा पसंद करते हैं वो लोग, कॉन्स्टेंट क्यूरियोसिटी उनके मन में रहती है कि एक जिज्ञासा रहती है यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है करके, स्मॉल टॉक से उतना एक खास लगाव नहीं रहता, और इंटरनल सिमुलेशंस हमेशा मेंटली सिनेरियोस को रीप्ले करते रहते हैं, कॉन्वर्जेशंस को रीप्ले करते रहते हैं, आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर ये सब आप करते हो तो कह सकते हैं कि आप एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल हो, और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बैठा बैठा एकदम से अपने दिमाग को थोड़ा वैंडर करने के लिए मैंने छोड़ दिया। सोचा मैं भी एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल बन जाऊं करके तो मेरे मन में ना एकदम से एक क्यूरियोसिटी आई कि नॉवल बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट पब्लिश्ड नॉवल कौन सा होगा करके। तो सबसे लॉन्गेस्ट पब्लिश्ड नॉवल बाय वर्ड काउंट, जिसे ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया है, वो है मार्सेल प्राउस्ट का इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। इसमें रफली 1.2 टू 1.3 मिलियन वर्ड्स हैं, 7 वॉल्यूम्स में नॉवल जो है लिखा गया है। और ये सोच के मैं जरा अचंभित रह गया था कि 1.2 टू 1.3 मिलियन वर्ड्स, वाओ, मतलब काफी ज्यादा वक्त लगा यार इसमें लिखने के लिए, और पढ़ने के लिए तो और भी लगेगा शायद। बट एनीवे, ये बात बताते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे बुल्ले शाह की कही गई एक बात जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि पढ़ पढ़ इल्मते फाजिल होया ते कदे अपने आप नो पढ़िया नहीं। मतलब चीजें पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा बन गया, मगर कभी अपने आप को पढ़ाए क्या करके। और ये इतना प्रोफाउंड एक लाइन है, ये एक लाइन काफी है इंसान को बैठ के थिंक करवाने के लिए कि यार मैं कौन हो करके। और जब अपने बारे में हम जानना शुरू करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की एक जर्नी में जाते हैं, तो सही में वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग होता है। और एक्चुअली ये जो है, और भी इसमें लाइंस हैं, इसके लिरिक्स और भी बाकी हैं, बट मैं सिर्फ इस लाइन में फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही लाइन जो है फाउंडेशन है हर चीज़ का। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज,
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: ओलिव रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं काफी एक्साइटेड हूं 27th अगस्त के लिए, क्योंकि 27th अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में बैक टू स्कूल बैश होने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लोगों का रिस्पॉन्स आया था, रजिस्ट्रेशन सब आए थे, उनमें से हमने सेलेक्टेड लोगों को जो है इन्वाइट किया है बैक टू स्कूल बैश का हिस्सा बनने के लिए, जहां पे स्कूल खुलने से पहले बच्चों के साथ चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, फन करेंगे और बहुत ही बढ़िया एक एंटरटेनिंग इवनिंग जो है हम एक्सपीरियंस करेंगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है आजकल के जमाने के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इनोवेशंस तो चल रही हैं, और उसके साथ साथ लोग कुछ और भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया से दूर रहना। अभी मेरी कजिन से बात हो रही थी तो मुझे बता रही थी कि मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। तो मैंने पूछा क्या हो गया, बोली कि नहीं मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मैं बिना इंस्टाग्राम के कैसे रह सकती हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा रिजल्ट कैसा आया है, क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि सच बताओ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम में जाके एक तो अननेसेसरी एंग्जाइटी होती थी कि यार बाकी सब बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, और दूसरा मेरा वक्त इतना ज़ाया होता था, इतना ज़्यादा निकल जाता था इंस्टाग्राम के चक्कर में कि मैं कुछ करती नहीं थी। और जब से मैंने इंस्टाग्राम को हटा दिया है तो मेरे पास बहुत वक्त आ गया है, मैं और लोगों से अच्छे से कनेक्ट करने लग गई हूँ, और सेल्फ वर्थ जो है थोड़ा और इम्प्रूव होता हुआ महसूस हुआ है। मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो आजकल के ज़माने के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ साथ मेंटल स्टिमुलेशन और मेंटल वेलबींग को भी प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो साल है 1945, अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर एक रडार टेस्ट कर रहे थे, एक रडार मैग्नेट्रॉन ट्यूब टेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने नोटिस किया कि उनके पॉकेट में जो कैंडी बार था वो पिघल गया। यानी कि ये रियलाइजेशन उन्हें मिला कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो है हीट कॉज करता है, तो उन्होंने क्या किया, पॉपकॉर्न के साथ भी टेस्ट किया, और जल्दी ही उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन जो है बनाया। तो सोच के देखिए, कुछ और बनाने की कोशिश में, कुछ और करने के चक्कर में कुछ और ही बन गया, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भी जो उन्होंने दिया। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Humne laga aur ho ja recharge. Olive
5: recharge. This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पर है। हम सब काफी बढ़िया तरीके से तैयार हो रहे हैं क्योंकि 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में बैक टू स्कूल बैश होने वाला है। बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, स्कूल खुलने से पहले, बस्ता जमाने से पहले बहुत बढ़िया तरीके से मस्ती करने के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं, गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। माहौल ही काफी सेलिब्रेटरी चल रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए जिसमें से हमने सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है कॉल बैक किया, इनवाइट भेजा है। और यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ हमारे कॉन्टेंट चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सेव कीजिए, हमें सुनते हुए रिकॉर्ड करके स्टोरी डाल दीजिए, टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी को रीशेयर कर देंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो गिफ्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया इनाम जीतने के मौके जो हैं आपके पास हैं। और यही बताते हैं हम, जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिल करिए, गाने सुनिए, उसके साथ साथ मुस्कुराते रहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

चुका है, गाने भी शो, मतलब सिमरन कौर का शो शुरू हो चुका है, गाने भी अच्छे आएंगे और बातें भी अच्छी होंगी और पता नहीं लगेगा कि ये जो चार घंटे अपने थे बेबी वो कैसे बीत गए। इतना ही कोई बस डरने वाला चाहिए। लेकिन लाल पीली मेरी अखियां देख के वो जरूर डर जाए, बट मेरी वो कैसे देखेगा, मेरी आंखें छोटी छोटी हैं, वो डरेगा भी नहीं यार। और बताओ डार्लिंग क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, कैसा रहा आपका आज का दिन। 3311063 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दो, वॉइस नोट के थ्रू अगर आप अपने दिन के बारे में बताएंगे तो वो ज्यादा अपनापन जो है वो फील होता है, तो बाकी अपनापन आपको लगेगा क्योंकि अब जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। मुस्कुराइए, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं 5:07:10 स्टूडियो की घड़ी पे। चलो हाई हुकू हाई करते हैं।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bindas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

अंजी गुप्त से आप ये गाना सुन रहे हैं। सत श्री अकाल सिमरन कौर, तुहाडे नाल 5:16 40 सैकिंड हो चुके हैं।

0: मुझे ऐसे गानों में से वाइब जो है ना वो सेट हो जाती है। लेकिन ये क्या वाइब है यार, मैं एक न्यूज देख रही थी, इंडिया कानपुर की न्यूज है, और क्या हुआ कि एक कंपनी में जो चॉकलेट के बॉक्स थे वो एक्सपायर्ड हो गए। ओके, सो वो एक्सपायर्ड होने के बाद कंपनी ने बोला कि भाई ये एक्सपायर्ड बॉक्सेस जो है वो बाहर फेंक दो। लेकिन लोगों को लगा कि ये तो भाई ट्रीट है, ये बॉक्स जो है वो ऐसे ही किसी ने फेंक दिए हैं, तो वो उठा लिए उन लोगों ने। भाई साहब, मेरा ये चीज बताने का ये मतलब है कि देखो, कोई भी चीज आपको पहली बात तो कोई लाइफ में फ्री देता ही नहीं है, फ्री की एडवाइस भी लोग नहीं देते हैं यार। ओके, सो अगर आपको कोई चीज इस तरह से दिख रही है, या फिर आप कोई भी चीज खा रहे हो, नॉट ओनली ये कि फेंके हुए चॉकलेट थे बॉक्स में और एकदम नए लग रहे थे, आप जो भी चीज अपनी लाइफ में खा रहे हो, खरीद के भी खा रहे हो, आपकी किचन में भी पड़ी है, आपके घर में भी पड़ी है, एक्सपायरी डेट जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली दवाइयों का भी देखना चाहिए आपको, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं देखते हो। आपको कुछ कुछ अंदर होता नहीं है, मैं नहीं खा सकती हूँ कोई भी चीज़ बिना एक्सपायरी डेट देखे हुए, मेरे को अंदर बहुत कुछ होता है यार। सो मेक श्योर कि ये आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: मेहरबानी करम आप सब की, आप लोगों ने बैक टू स्कूल बैच के लिए बहुत बढ़िया तरीके से रजिस्टर करवाया और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको कोई कॉल नहीं आया। डार्लिंग, आपको कॉल नहीं आएगी। अगर आपने रजिस्टर करवाया था तो आप ऑलरेडी इन्वाइटेड है, तो अबू सिद्रा मॉल में 27 तारीख को दोपहर 3 बजे पहुंच जाइएगा। आपके बच्चों के साथ फन करेंगे, मजा करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना कि सिमरन मुझे ये नहीं समझ लग रहा, तो 3311063 पे वॉइस नोट भेज दो, मैसेज भेज दो, रिप्लाई कर दूंगी यार।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ हरभजन मान
1: भजन मान
0: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

बताओ, गलत मत सिखाओ, दोनों आंखें मारने से छोरा पड़ जाए, ये क्या बात होती है यार। से छोरा नहीं पड़ेगा, छोरे को लगेगा कि पागल है यार ये। क्या कर क्या रही है यार ये औरत। 5:48 हो गए स्टूडियो से खड़ी दे सिमरन कौर तोड़े नाल है। सबके मैसेजेस के लिए आप लोग इतना प्यार बरसाते हो, अभी तो आपको और भी 9 बजे तक प्यार बरसाते रहना, इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको थिएटर जो है पसंद है और थिएटर आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है वो कतर में इतना ज्यादा नहीं रहा है लेकिन आप देखना चाहते हैं, तो एक और चीज है जो कि मेरी फेवरेट है। मैंने कुछ साल पहले जब अपने कतर में बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते थे, अभी तो वापस से होने स्टार्ट हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है। सो उसमें से एक इवेंट है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, वो है मुगले आजम। जी हाँ, मुगले आजम जो है वो अल मयासर थिएटर में QNCC में एक बार फिर से होने वाला है। मैं आज देख रही थी इसके बारे में, 6th और 7th नवंबर को 2 दिन शो ये रहता है और भाई साहब बहुत ही अलग लेवल का शो रहता है। देखिए अगर आपको थिएटर पसंद है वो तो आप देखेंगे, लेकिन अगर आपको थिएटर नहीं भी पसंद है तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मुगले आजम का जो ये प्ले रहता है ना वो वाकई में अलग लेवल का रहता है, आपको रिग्रेट नहीं होगा यार देखने के लिए। सिमरन गौरी आपके साथ, जी ओ बिंदास। बागी गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

0: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: जस्ट फील लाइक
5: सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

और बताओ यार, मौसम भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार जो है ऐसा दिखा रहा है कि करता है, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले एक दो दिन में बारिश होने वाली है। मौसम बातों पे ज्यादा खुश होती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बार धोखा होता है, और बारिश अगर होती है तो वो दोहा के पता नहीं कौन से कोने में होती है, हमको दिखाई नहीं देती, हमको सिर्फ वीडियो दिखाई देते हैं बाद में। सो 37 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 55% है, विंड जो है 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। सो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 33 डिग्री सेल्सियस। यस ऑफकोर्स ह्यूमिडिटी तो है ही है दोस्त, सो ध्यान रखो यार अपना। एंड जियो विंदास

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: सुनो सुनो सुनो,
3: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
3: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
5: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
6: गुलराज सिंह
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
6: जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ
1: आप 27th को जी हां इस 27th को अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 बजे पहुंच जाइएगा फिर फन करेंगे वीकेंड मनाएंगे बैक टू स्कूल बैश में पार्टी करेंगे

0: song.
1: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: Song of the hour.
3: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है.
0: Cool song.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: पूछना।
1: एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं। तो किसी ने ना, कोई किसी के साथ चैट कर रहा था, तो उसने मुझे दिखाया कि इसने ना मुझे लिख के भेज दिया है LMK। तो LMK का मतलब क्या होता है कि Gen Z लिंगो जो है बहुत ज्यादा क्रेजी है। सो जब भी आप उनसे चैट करोगे ना, तो वो अपनी ही लैंग्वेज जो है वो लिखते हैं। अगर आपको किसी ने LMK लिख के भेज दिया, दैट मीन्स लेट मी नो। सो वो पूरा वर्ड, मतलब वो पूरी लाइन लिखने से अच्छा है कि वो शॉर्ट फॉर्म जो है उसको यूज करते हैं। सो या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। सो एवरी डे हम लोग डीकोड करते हैं Gen Z लिंगो को। 6:35 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है और बड़ी किक मिलती है यार मुझे इस गाने से।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: हंजी
1: आप हा करके तो नहीं हंसोगे
0: लेकिन दिल में हंसोगे और ऐसे सोचोगे सीरियसली यार ऐसा कौन करता है यार। सो या क्या हुआ कि एक न्यूज देखी मैंने जिसमें इंडिया की बात है। सो किसी एक बंदी ने गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के जो गाड़ी है ना जो कार है वाइट कलर की कार लिपस्टिक से उसके वाले निशान जो थे वो बना दिए। वो कितने निशान उसने बनाए 3400 निशान बनाए गाड़ी के ऊपर और उसके बाद क्या हुआ पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब ऐसी चीजें का अलाउड नहीं है तो उनके ऊपर 5500 का जुर्माना डाल दिया उन्होंने। तब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसी हरकत क्यों की, कहते कि मेरा पुराना वाला अकाउंट जो था वो बंद हो गया था हैक हो गया था तो हम वायरल होना चाहते थे, हमने नया अकाउंट बनाया था इसीलिए हमने इस तरह की हरकत कर दी। लाइक सीरियसली ब्रो सीरियसली मतलब ऐसी हरकत कौन करता है यार। खैर आप भी ना करिए इसलिए मैंने आपको बता दिया यार, वायरल होने के लिए दुनिया कुछ भी करती है।

भाई साहब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं. अगले घंटे हम खेलने वाले हैं नेम गेम, उसके लिए भी तैयार हो जाइए. रियलिटी चेक भी होगा. और आज हम कौन सी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, वो भी होगा. बस थोड़ा सा इंतजार करिए डार्लिंग.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
4: तो हरी लचके जब कमरिया हसा।

7:04 हो चुके हैं और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं बिल्कुल दिल से फिल्म के बारे में बात करने वाले, लेट मी टेल यू, एक हॉलीवुड फिल्म है इनसाइड मैन, अगर आपने देखी है। इस फिल्म की शुरुआत में ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा होता है। सो या दिल से फिल्म के बारे में जो मैं बताऊं, अगर आपको वो गाना है ना, जिया जले जान जले, जिसको लता जी ने गाया है। सो लता जी, क्योंकि उनकी एज हो रही थी तो उस टाइम पे उनको हाई पिच पे गाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो एआर रहमान ने उनकी वॉइस जो थी वो जितना हो सके वो लो रखी। सो उन्होंने इस तरह से ये गाना गाया। लेकिन इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। तो फिर सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा सुंदर रेडियो ऑलिव करके इधर जी।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: This is Amira Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: शाहरुख खान ने कोई भी सेफ्टी चीज जो थी वो इसके लिए यूज नहीं की थी, जो उन्होंने ये छैया छैया डांस किया था मूविंग ट्रेन पे, तो उन्होंने उनको कोई डर नहीं लगा इस फिल्म के लिए। काजोल को भी रिक्वेस्ट किया गया था, मनीषा कोइराला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन लोगों ने जो था ये मना कर दिया था ये वाला छैया छैया डांस करने से। फिर मलाइका अरोड़ा जो थी वो इस गाने के लिए आई, बट जब वो ट्रेन के ऊपर डांस कर रही थी उनको बैलेंस करने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए उनके घाघरे और उनके वेस्ट के पास जो था ना वो उन्होंने एक रोप जो था वो बांधा हुआ था। सो अब क्या है कि जब वो डांस वांस हो गया, शूटिंग खत्म होगी, जब वो रोप निकाला गया, जब वो रस्सी निकाली गई, तो उनके बॉडी पे जो थे उनके यू नो स्टमक के पास कट्स जो थे ना वो लगे हुए थे, एंड बहुत बहुत सारा जो था उनका बुरा हाल हो गया था क्योंकि वो रोप बार बार खिंच रही थी और वो डांस कर रही थी। शिल्पा शेट्टी को भी बोला गया था ये छैया छैया डांस के लिए, लेकिन शिल्पा शेट्टी को बहुत ज्यादा डर लगता था कि भाई ट्रेन के ऊपर चढ़ के मैं छैया छैया करूंगी तो उनकी अपनी छैया छैया हो जाएगी। लेकिन वाकई में काफी डेयरिंग गाना है यार ये। देख के मुझको दिलाएगो डॉलर है, आई नो राइट।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

और एक चीज जरूरी है, देखो यार जब आप किसी इंसान का बहुत ज्यादा करते रहते हो, उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो करते रहते हो और फिर उसके बाद अगर वो चीज आपने एक बार नहीं की तो सामने वाले के दिमाग में वो चीज जो है वो आ जाती है, अरे जो आपने 70 बार पहले उनके लिए चीजें की हैं वो सब भूल जाएंगे लेकिन ये जो एक बार आपने नहीं चीज की वो उनको याद रह जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना आप लोगों के लिए जो है ना वो कभी कभी करो, क्योंकि क्या होता है इससे आपकी वैल्यू जो है वो बनी रहती है। जब आप बहुत ज्यादा किसी का करने लग जाते हो ना तो सामने वाला आपको लाइटली लेने लग जाता है। अकेला छोड़ रही हूँ, फिर वापस लौटती हूँ, नेम गेम खेलेंगे।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcor.
3: Oh no, fir se school. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। Registrations are officially closed. तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27th of August को। Venue partner अबू सिद्रा मॉल, where convenience meets choice and community meets style. अबू सिद्रा मॉल, a complete family destination.
4: Gifting partner Daiso Japan. You name it, we have it.
3: And
4: Doha Center. Shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
4: Call 70222525.
3: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: और इस मैजिकल गाने को सुनते सुनते अपना नाम टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम नेम गेम खेलने वाले हैं।

मजनू के गाने सुनते ही पूरी फिल्म मेरे जहन में घूमने लगती है यार। स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ है और ठीक हो? चलो फिर आपका नाम लेके आपको और ठीक कर देते। वेल, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे ले लूं तो बिल्कुल तैयार हैं हम आपका नाम लेने के लिए। क्विकली आप एक काम करिए, अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। और चलो मैं आप लोगों के नाम लेने स्टार्ट कर रही हूँ। इहान, मोहम्मद, हया, खदीजा, जाया, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फैजान जी ऑलरेडी, ओके फाइन, नाम बोल दिया मैंने। सभ्या जी थैंक यू सो मच, सलीम जी थैंक यू सो मच, सईद जी थैंक यू सो मच, आसमान जी थैंक यू सो मच, डीजी जी थैंक यू सो मच, संजय जी थैंक यू सो मच, अजम जी, हसने जी थैंक यू सो मच, जुनेद जी।

थैंक यू सो मच आयुर्दा जी, थैंक यू सो मच लतीफुल्ला जी, थैंक यू सो मच फूल कुमारी जी, थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजो 3311063 पर। अभी थैंक यू मत लिखो दोस्त, थैंक यू लिखने का मौका मैं आपको बाद में दूंगी, पहले नाम बोल लेते हैं हम। तीरथ प्रसाद जी, जेनिफर जी, थैंक यू सो मच। नईम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच। विजय कुमार जी, थैंक यू सो मच। नूरी जी, थैंक यू सो मच। नोबी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। नहीं, मैं ऑलरेडी आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ। साहिल जी, थैंक यू सो मच। दीपक जी, थैंक यू सो मच। पाली जी, थैंक यू सो मच। आयजा नवीद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। सुदीप जी, थैंक यू सो मच। नोबी पठान जी, थैंक यू सो मच। अली पाकिस्तानी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है, क्विकली नाम लिखो। विनायक जी, थैंक यू सो मच। 3311063 इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। अली जी, थैंक यू सो मच। विनायक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। स्नेहा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच। हीरो जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, बड़ा आप थैंक यू लिखो और फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दो। अगले घंटे खेलते हैं।

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Hi, this is Kailash Kher. And you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हाँ जी, मैं और मोहब्बत कितनी करूं बोलना। हाँ जी, मैं जी सोनियो की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। यार कभी कभी प्यार में ऐसा भी मंजर आता है, ऐसा भी दौर आता है कि जब आप सामने वाले को बोलते कि बता ना यार तेरे को और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं, सामने वाले को एहसास दिलाना पड़े ऐसी मोहब्बत का क्या ही करना यार, क्योंकि मोहब्बत तो फील होती है ना अपने आप।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: अब आप गाने की भी फील लीजिए और मुझे बताइए गाना कौन सा है।

जी क्या लग रहा है ये गाना कौन सा है? अगर आपको पता लग गया है तो लिखना नहीं है, वॉइस नोट नहीं मतलब वॉइस नोट भेजना, आपने लिखना नहीं है, ठीक है? क्विकली आप मुझे वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, हे सिमरन, सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ, ठीक है? क्योंकि जबरदस्त इवनिंग सुन रहे हो यार आप। हे सिमरन, अपना नाम बताइए, गाना गाना है या बोलना है वो आप डिसाइड करिए, लेकिन वॉइस नोट भेजना है, लिखना बिल्कुल नहीं है। एक बार मैं वापस से आपको सुना रही हूँ, अगर आपको रिकॉर्डर ऑन करना है तो कर लीजिए, ताकि आप थोड़ी दो चार बार सुन सकें।

0: नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 3311063।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: और आप लोगों के अब जवाब सुनते हैं यार।
1: हाय सिमरन,
0: हाय,
1: गुड इवनिंग। ये गाना है हीर हीर ना आंखों में नू।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
2: और वेरी वेरी गुड इवनिंग सिमरन जी, ये जो अभी आपने टोन प्ले किया था वो है सॉन्ग हीर हीर ना आंखों में नू, मेरे साहिबा हुई।
0: हाय हाय हाय,
2: थैंक यू सो मच। रेडियो ऑलिव जियो बिंदास,
0: मुझे आपकी एनर्जी बहुत प्यारी लगी है यार, थैंक यू।
3: हाय सिमरन, हाउ आर यू? माय नेम इज इमाद एंड दिस सॉन्ग इज हीर हीर ना आंखों कोई।
0: हाय हाय,
3: मैं ता साहिबा हुई, डोली लेके आवे ले जावे।
0: क्या बात है यार, आप लोग कमाल हो, बिल्कुल गाना ही दोस्त यही था। थैंक यू सो मच।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बाकी की तारीफ ही कल करूंगी तो चलेगा ना। चलो फिर कल शाम को 5 बजे फिर से होती आपसे मुलाकात। चल देन खाते बिंदर ऐश कर दे रहे चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर किलो।

So, कल एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है और उसके रिलीज से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज इंटरनेट पर डिस्कस हो रही है, मूवी के टिकट के प्राइस। मतलब यश की टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स को लेकर एडवांस बुकिंग में काफी बस है और कुछ प्लेसेस पर प्रीमियम टिकट प्राइसेस भी डिस्कस हो रहे हैं। और अब सवाल ये है कि मूवी अच्छी है या बुरी, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लोग मूवी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों होते हैं? बिकॉज समटाइम्स हम टिकट नहीं खरीद रहे होते, हम एक्सपीरियंस खरीद रहे होते हैं। पहले दिन की मूवी देखेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट रिलीज, बिग स्क्रीन, क्राउड का रिएक्शन और फ्रेंड्स के साथ वो एक्साइटमेंट। मतलब मूवी को अगर दो तीन दिन हो गए ना रिलीज हुए, तो आपको कहीं ना कहीं मिक्स्ड चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, किसी के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन पहले दिन जो लोग मूवी देखते हैं उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और फिर पूरी डिस्कशन OTT पर आप मूवी देखते हो, ठीक है। थिएटर में कभी कभी मूवी के साथ एक मेमोरी बन जाती है। तो ऑनेस्टली आप बताइए कि आपने किसी मूवी के लिए कभी इतने पैसे स्पेंड किए हैं कि बाद में लगे कि यार इतने में तो डिनर भी हो जाता। बाय द वे मैंने किया है, लग्जरियस वो जो हॉल्स होते हैं ना जहां पर रिक्लाइनर्स होते हैं सिर्फ 50 सीट्स वाले, मैंने बहुत बार वैसे मूवी देखी और बाद में बहुत फील हुआ है कि यार बहुत महंगी थी। बाय द वे यू टेल मी, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

एक तरफ है सोफा, एसी, ब्लैंकेट, पॉज बटन और फ्रिज, बस तीन स्टेप दूर ओटीटी। दूसरी तरफ है डार्क थिएटर, बिग स्क्रीन, लाउड साउंड और आपके पीछे कोई ऐसा बैठा है जो हर 5 मिनट में पॉपकॉर्न खोल रहा है। फिर भी थिएटर का चार्म खत्म नहीं हुआ, बिकॉज घर पर हम फिल्म देखते हैं, थिएटर में हम फिल्म एक्सपीरियंस करते हैं। जब 300 लोग एक साथ हंस रहे होते हैं, जब क्लाइमेक्स पर पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है, जब ओपनिंग सीन पर सीटियां बज रही होती हैं, वो कलेक्टिव फीलिंग्स ना घर के टेलीविजन में कभी भी रिक्रिएट करना मुश्किल है। लेकिन OTT ने भी सिनेमा को कम्प्लीटली चेंज तो किया है। अब मूवी के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता, बस रिमोट उठाओ। टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को कन्वीनियंस में बदल दिया है, लेकिन क्या कन्वीनियंस ने एक्सपीरियंस को रिप्लेस किया है? आई डोंट थिंक सो यार। आपकी क्या चॉइस है, सोफा और ब्लैंकेट या पॉपकॉर्न और बिग स्क्रीन? बाय द वे, मेरा डिपेंड करता है कि मैं कैसे मूड में हूँ। आप मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, क्योंकि कल मूवी रिलीज हो रही है, सो सोचा आज थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आपसे एक दो सवाल। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: ये है मिड नाइट लाउंज।
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

So, आज एक फनी सिचुएशन है. आपका फ्रेंड कोरियन ड्रामा देख रहा है, दूसरा स्पेनिश एकदम थ्रिलर मूवी, तीसरे को किसी मलयालम मूवी में इंटरेस्ट है और आप हो हिंदी कॉमेडी वाले और सबके सबटाइटल्स ऑन है. एक टाइम था जब हम पूछते थे कि बॉलीवुड या हॉलीवुड, आज सवाल ही चेंज हो गया है. स्टोरी अच्छी है, ओके देन लेट्स वॉच, बिकॉज OTT ने एंटरटेनमेंट का पासपोर्ट ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया है. मतलब लैंग्वेज अब बैरियर कम और गेटवे ज्यादा बन गई है. नाउ आई फील कि यार अगर आपको हिंदी मूवीज से थोड़ा सा मन भर गया है या आपको लग रहा है नहीं पसंद आ रही, तो आप हॉलीवुड पे स्विच कर लो. अगर हॉलीवुड से भी मन भर गया है तो भाई मलयालम मूवीज बहुत अच्छी हैं, आप वो देख लो विद यू नो डब्ड मूवीज और सबटाइटल के साथ. अब आप एक कोरियन कैरेक्टर की प्रॉब्लम फील कर सकते हो, एक स्पेनिश सिटी की स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो, एक मलयालम फिल्म का इमोशन समझ सकते हो, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड. ठीक है, मे बी गुड स्टोरी टेलिंग ही असली लैंग्वेज होती है. इमोशंस हैं, वर्ड ट्रांसलेट हो सकते हैं, फीलिंग्स नहीं. सो कदर यू टेल मी, आप सबटाइटल्स के साथ कोई भी लैंग्वेज हैप्पीली देख सकते हो अगर स्टोरी जबरदस्त हो या अपनी लैंग्वेज का कंफर्ट स्टिल अनबीटेबल लगता है आपको. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। रजिस्ट्रेशन आर ऑफिशियली क्लोज्ड, तो मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में 27 अगस्त को। Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
1: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
0: And
1: Doha Center, shop more, pay less.
0: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
0: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
2: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

एक सिटी में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने एक सैंडविच शॉप का इनॉग्रेशन किया, क्राउड के साथ डांस भी किया और नेचुरली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया। अब इमेजिन कीजिए, हमारे पेरेंट्स के टाइम में रोबोट का मतलब था साइंस फिक्शन, हमारे टाइम में रोबोट का मतलब है एलेक्सा लाइट ऑफ कर दो, और अब रोबोट रिबन कट कर रहा है। टेक्नोलॉजी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि वो सिर्फ काम नहीं कर रही, वो ग्रेजुअली सोशल स्पेस में भी एंटर कर रही है। बट एक सवाल है, क्या फ्यूचर में हम रोबोट्स को सिर्फ मशीन समझेंगे या उनके साथ एंटरटेनमेंट, कॉन्वर्सेशंस और इवन इमोशनल कनेक्शन भी डेवलप कर लेंगे? भाई इसके लिए मुझे लगता है कि ये ना कहना तो गलत होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यू नो चैट बॉक्स के साथ इतनी बातें कर लेते हैं। सो इमेजिन योर ऑफिस टुमारो, बॉस ने एंटर किया और आपने देखा रोबोट। फर्स्ट क्वेश्चन, सर अप्रेजल कब मिलेगा? बस यही पूछना है, फिर क्या है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, 3311063 इज माय नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. एक गाना 30 साल पुराना है लेकिन वेडिंग में बजता है और 20 साल पुरानी भी उस पर डांस कर लेते हैं. मतलब किसी कैफे में कोई पुराना गाना प्ले हो और टेबल पर बैठे टीनेजर्स बोलते हैं ओ आई लव दिस सॉन्ग, और हम सोचते हैं बेटा जब ये रिलीज हुआ था तब हम पैदा भी नहीं हुए थे. बट दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक यार. सॉन्ग की एक्सपायरी डेट नहीं होती. आपके पेरेंट्स का फेवरेट गाना, आपके कॉलेज का सॉन्ग और आज के किसी टीनेजर का वायरल गाना सब एक ही प्लेलिस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेट म्यूजिक सिर्फ अपने टाइम का नहीं होता, वो हर नए जनरेशन को अपनी मीनिंग देकर जाता है. कभी लिरिक्स चेंज नहीं होते, कभी लिसनर्स चेंज हो जाते हैं. तो आज आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा पुराना गाना है जो आपको लगता है कि 20 साल बाद भी लोग उतने ही प्यार से सुनेंगे. एंड प्लीज़ एक ही चूज करना. आई नो आपकी लिस्ट बहुत लंबी होगी. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. ये है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

सो एक इंटरेस्टिंग चीज देखी है आज के यंग ऑडियंस को माइकल जैक्सन इंट्रोड्यूस करने के लिए. माइकल जैक्सन की एज मैटर नहीं करती, एक बीट प्ले होती है और गाना, और नेक्स्ट जनरेशन नोज की मून वॉक स्टिल आइकॉनिक है और स्टिल यू नो सब जगह आपको दिख जाएगा. और ये सिर्फ माइकल जैक्सन की स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि ग्रेट म्यूजिक जनरेशंस के साथ रिटायर नहीं होता. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट म्यूजिक और फिर मुझे माइकल जैक्सन की याद आ गई. हम सोचते हैं न्यू जनरेशन को सिर्फ न्यू म्यूजिक पसंद आएगा, बट देन सडनली किसी यंगस्टर ने कोई गाना डिस्कवर किया और वो बोलता है कि हाउ डिड आई नॉट नो दिस बिफोर, क्योंकि मतलब उनके लिए ये टेस्ट था एकदम क्लासिक. हो सकता है वो पॉपुलर ना हो, लेकिन डज समवन डिस्कवरिंग इट 30 इयर्स लेटर स्टिल फील समथिंग. तो आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा एक गाना है जो आज की जेंजी को भी पक्का क्रेजी कर देगा और आपको लगेगा कि यार ये गाना मतलब सबको पसंद आ सकता है. बाय द वे, जेंजीज आर मोर क्लेवर, उनको ज़्यादा पता है हमारे बारे में, हमारी यू नो पुरानी जनरेशन के बारे में. आप मुझे बताइए 3311063 पर वो कौन सा गाना होगा. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

ये टॉपिक ना थोड़ा सा डिफरेंट है। बेंगलुरु में हॉस्पिटल के नॉन क्लिनिकल एरिया में एक म्यूजिक एंड कॉम्बुचा इवेंट था और इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि व्हाई नॉट, हॉस्पिटल कैन आल्सो हैव पॉजिटिव स्पेसेस। बाकी लोगों ने बोला कि हॉस्पिटल इज अ सीरियस प्लेस, म्यूजिक इवेंट यहाँ यू नो स्ट्रेंज लगता है। और ऑनेस्टली दोनों साइड समझ आती है क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हम इलनेस, ट्रीटमेंट्स और स्ट्रेस के बारे में सोचने लग जाते हैं। बट दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रहने वाले लोग भी तो इंसान ही है, उन्हें म्यूजिक पसंद हो सकता है, हंसी आ सकती है, उन्हें नॉर्मल लाइफ का एक छोटा सा मोमेंट चाहिए हो सकता है। मे बी हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, एनवायरमेंट से भी मैटर करती है, बट बाउंड्रीज भी जरूरी है। तो आपका क्या ओपिनियन है, हॉस्पिटल के नॉन क्लिनिकल एरिया में स्मॉल म्यूजिक इवेंट नाइस आइडिया है या कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट? आई जनरली वॉन्ट टू नो अबाउट यू नो योर थॉट्स, कि आपको क्या लगता है, कतर क्या सोचता है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइव मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, लेकिन जाते जाते आपको एक और बात बताती हूँ. कभी आपने कोई पुराना गाना सुना है और सडनली लगा हो कि अरे ये तो बचपन में सुना था, बट इंटरेस्टिंगली कुछ साउंड्स और सॉन्ग्स हमारे ब्रेन में इतने स्ट्रांगली स्टोर हो जाते हैं कि सिर्फ 2-3 सेकेंड सुनते ही पूरी मेमोरी एक्टिव हो जाती है. कोई पुरानी रिंग टोन, आपने पुराने 12th क्लास में जो फ़ोन लिया होगा उसका रिंग टोन आपको आज भी याद होगा. स्कूल

किसी पुरानी मेमोरी में लेकर चले जाते हो, या मे बी कोई ऐसा गाना जो आज आपको दोबारा से सुनने का मन कर रहा हो। सुन रहे हैं आप 3311063, डायल करके बता सकते हैं। दिस इज रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखिए, बट आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप एंड मे बी टुनाइट वो सॉन्ग एक बार जरूर सुनना। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम
4: जियो बिंदास

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।